0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वाव कितनी हैंडसम, ओ माय गॉड, लव पाइनु पर सकी क्या हो?
2: Oh, yeah!

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: कृषि विकास बैंक
1: तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक।
2: आईएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर वन रेमिटेन्स कम्पनी।
3: आईएमई गरौं